प्रेम गुरु वरुणदेव भगवान की जय। गुरु मूव इन टू आवर गुरु पूजा कर लेते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माय क्लास। चलिए पुट सम फ्लावर्स ऑन। दिस इज पार्ट ऑफ आवर पूजा कर्मकांड वेयर वी पे होमेज to the feet of our Guru, Guru in Lord Brahma, Guru in Lord Vishnu, Guru in Bhagavan Shiv, our universal Guru. We beg and pray that Bhagavan bring to us this divine intuition to make us think properly, think out of the box, so as to bring about solutions to our many, many problems. So we're going to throw this water continuously on the pair of chappal. We're going to chant Jaya Jaya Guru Om, Jaya Jaya Shiva Om. Everybody can join in.

कृष्णेन रजस महते ज्येष्ठाय महते ज्ञान राजाय इंद्रियाय स्नेन्द्रियाय इमं महामोक्षे पुत्र मोक्षे पुत्रमस्य विशेषमि राजा सोमो अस्माकं ब्रह्मणां राजा श्री चंद्राय नमः। ओम अग्निर्मूढ़ा देवा ककुत्पति पृथिभ्या आयम आपा गुंग रेता गुंग सिजिनुति। ओम श्री भावमाय नमः। ओम उद्भुज्य स्वाग्ने प्रतिजागर त्वामिष्टा पूर्ते संसजिते मयम च अस्मिन् सरस्ते अध्यूतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीधता। ओम श्री बुद्धाय नमः। ब्रिंग बृहस्पते नमः अंगिरस गोत्रस्य। ओम श्री शुक्राय नमः अत्रिरस गोत्रस्य। शनो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतिये शनो रवि श्रवन्तुना। ओम श्री शन शनिश्चराय नमः। ओम रंग राहुवे नमः। पैंतीस गोत्रस्य किंकाकेभ्यो नमो नमः। श्रीनाम ग्रह देवाय स्थापितम्। ओम गंगेशाय मुनाश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरु। वेद सूक्त समायुक्त युग सामा समन्वित सर्वर्णा प्रदादे वासासि प्रतिगृहतां श्रीखंदनं चननं दिव्यं गंधाद्यो सोमनोरमि लेपनं सुराश्रेष्ठि चननं प्रतिगृहतां सिन्दुरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं प्रियावर्धनं सुकरं मोक्षरं शैव सिन्दुरं प्रतिगृहतां यज्ञोपवीतं परमं पावित्रम् प्रजापत्यजं पुरस्तात् आयुष्मकं पतिमुं शुभ्रं यज्ञोप्रवीतं बलमस्तु तेजः। ॐ श्री शर्करातनक ध्यानिधि क्षीरावतां च आहारं भक्षभोजं च धैर्युजं रतिविदतां तुष्टि। ॐ तुष्टि हेमरूपं च रत्नरूपं च मञ्जरीं भावमोक्षपदां तुभ्यं समर्पयामि। हरि प्रियाया फला निरजा फलि आ पुष्पाया पुष्पनि बृहस्पति प्रभुता स्थानि मुंशन त्वं वंहसी। ओम एला लवंग कर्पूर आदि सहितं तांबूलं समर्पयामि श्री सुरनावग्रादि देवाय। नमोस्तुते हिरण्य गर्भ गर्भस्थं हेम विजंग भावसौ अनन्य पुण्य फलं त शांति प्रयश्च मे। कुमकुम कामना दिव्यं कामना शंभुवं कुमकुमी नाशिता देवा विहारं परमेश्वरं मायकादि सुगंधिनी मल्यचारी नवे प्रभु मारतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतीगतां वनस्पते रसोत्पन्न सुगंधाद्यो सो मनोहर आग सर्वदेवानं धूपोयं प्रतीगृहतां से स्वाहा। ओम श्री सूर्याय नमः स्वाहा। ओम श्री चंद्राय नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम श्री बुद्धाय नमः स्वाहा। ब्रिंग बृहस्पति नमः स्वाहा। ओम श्री शुक्राय नमः स्वाहा। शन शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम रंग राहुवे नमः स्वाहा। किंकाकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री नवग्रह देवाय भ्यो नमः स्वाहा। आचमन्यम सुराचमन्यम पूर्ण आचमन्यम दीपम यानि कानि शपापानि जन्मन्तरकृतानि च तानि तानि विनाशन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे श्रीदीपज्योति नमोऽस्तु ते। टेक सम फ्लावर्स इन प्रार्थना एवरीबडी। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानुशशी भूमि सुतो बुधस्य।

0: अमुखमासी अश्विन मासे पृथ्वो नाम तिथि यजमानाम च कश्यप गोत्र सामुक नाम सदाशिव शंभु ध्वजा करने एवं गुण विशेष विशिष्टाय शुभ पुण्य सकल श्रुति स्मृति पुराण पर प्राप्ति काम शुभ बांधव नौ ग्रह नू ग्रह सरानी व्रति नायुर्द दीर्घायु पौती दान स्मृतन नौ ग्रह मिशिनी प्रेम चबल सदा की भगवान की जय। मंगलं भगवान शंभु मंगलं वित्त भक्त च मंग पार्वती नाथ मंगलं भक्त वत्सल प्रेम चबल सदा श्री भगवान की जय।
1: Take this from me, God.

0: पाद्यम ओम पाद्योः पाद्यम समर्पयामि ओम दुम दुर्गाये नमः अर्घ्यम ओम हस्तयोर्यम समर्पयामि ओम दुम दुर्गाये नमः आचमन्यम
1: ओम मुखे आचर्यम समर्पयामि
0: ओम दुम दुर्गाये नमः स्नान
1: ओम स्नानार्थम जलम समर्पयामि ओम दुम दुर्गाये नमः
0: पंचामृत
1: ओम पंचामृतेना पचायोर्यकेना समर्पयामि ओम दुम दुर्गाये नमः
0: वस्त्र
1: ओम वस्त्रम समर्पयामि ओम दुम दुर्गाये नमः
0: गंध
1: ओम गंधम समर्पयामि ओम दुम दुर्गाये नमः
0: कुसुम सिंदूर ओम सेंदुरंग शोभनंग रक्तं सौभाग्यं प्रियावर्धनं सुखदं मोक्षदं शैवा सेंदुरं प्रतिगृह्यताम् ओम दीपम ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च
1: तानि कानि शक्ति परक्षणां परे
0: दीपं समर्पयामि ओम दुम दुर्गाये नमः

0: पुष्पं समर्पयामि
1: ॐ दुर्गाय नमः।
0: अगरबत्ती एंड सो ऑन ओम धूपम अर्पयामि
1: ओम दुर्गाय नमः।
0: We can get some prasad. Anybody else with prasad? Mother Durga? Put this one. Put flowers in so baba. Flowers. Ready? Pick. Hari Om Tat Tat Tat Tat Tat Tat Vishnu Hare Vishnu Hare Vishnu Mahamangal Pradiman Sotame Masi Amukha Masi Ashwin Masi Shukla Pakshe Tritiyo Naam Tithi Somvasari Ratri Se Jajmanamasya Amuk Naam Aaj Shakti Mata Dhvaja Karne Evan Guna Vishesh Vishishtayam Shubh Purni Sakala Shruti Smriti Puranpa Prapti Kaam Shubhat Bandhavasya नाव ग्रह नू ग्रह द्वार ग्रह कृत राज कृत सर्द तिरानी प्रति नाय रुदति ढायु पावती विदान से मेरे चंग नाव ग्रह में किने शे हिरण से आज शक्ति माता ध्वजा संकल्पम हम करी शे नय वीर्यम समर्पयामि ओम दुम दुर्गायै नमः। नय वीर्यम गृहताम देवा भक्ति मे चलम कुरु शक्ति माता की जय। टेक दिस फ्रॉम टेक फ्रॉम योर माउथ टर्न ऑन देयर एंड टेक अच्छा वी गोना एट दिस टाइम ऑफर द अदर शेयर्स ऑफ प्रसाद And we're going to do the Durga Chalisa. Namo, namo. Get your Durga Chalisa ready.